ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिय ध्यान लइया पौ मुकह गुर अमरदास परसिय अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जौ तौ रहै जा सुमंत्र मानवै लहै जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठै मिलै कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

परम सम्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतियां ने कल दा दिन जो बतीत होया है कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदो आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलखण सानू जड़ी नजर आउंदी है इत्थे गुरु दी कृपा ते निर्भर करदा है। 7 साल का बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल की उम्र विच बंदे नू सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने यह 70-72 गया। 12 साल गागर ढो के 72 साल का बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकता है। यही विलखणता है कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते ने ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नूं गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना वह कहा होया केवल तर्क की बिरती वाला लगेगा ते जदो प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास की कृपा वरसेगी। विचार आरंभन तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है सन 1479 नू बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे होए। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नू राय भोए की तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हों का जन्म आगमन शब्द वरत लईए के पिंड बासर के 1479 नू होया 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरतनिया अजे ओ गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने छोटे तीन भरा ने ते इथों तक ये कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां ये भी लिखिया रेशम दे कपड़े का वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने ते बाबा अमरदास जी का पूरा परिवार जिहड़ा जिमीदारा भी करदा है। बाबा अमरदास जी दे संतान इन्हां दे घर दो पुत्र ते दो पुत्रियां पैदा होईयां। वड्डे दा नाम सी बाबा मोहन जी, छोटे पुत्र दा नां है बाबा मोहरी जी, वड्डी पुत्री दा नां है बीबी दानी जी, छोटी बच्ची दा नां है बीबी भानी जी। बीबी दानी जी दा आनंद कारज होया भाई रामा जी दे नाल ते बीबी भानी जी दी शादी उन्हां दा ब्याह उन्हां दा आनंद कारज होया भाई जेठे दे नाल जिहड़े बाद विच गुरु रामदास बने। बाबा अमरदास अपने पिंड विच टिके ने, पिता इन्हां दे भी दया दी धर्म दी मूर्त ने ते इन्हां दे मन विच एक फुरना उठदा है जिहड़ा मन दा टिकाओ वे। जिहड़े असी प्रभु तो कई जन्मां दे विछड़े हां, कोई तरीका है कि अंदर दी भटकना दूर हो जाए ते उस प्यारे प्रभु जी दे चरणां विच लीन हो जाइए। ते इसे गल नूं मुख रख के बाबा अमरदास जी ने एक टीचा मिथे है कि हर साल मैं गंगा ते जाके इशनान करना, दान पुन करना, आए गए दी सेवा करनी है। हो सकता है कि गंगा दा इशनान करन दे नाल मेरे इस मन नूं टिकाओ मिल जाए, मेरा अंदर किते भटकनों बच जाए, मैं उस प्रभु दे चरणा विच लीन हो सकां। ते बाबा अमरदास एक दो साल नहीं 19 वारी ओ तीर्थ इशनान करन गए ने। कईयां ने शब्द भी वरत्या, खैर तीर्थ इशनान गंगा इशनान हर वार करन जांदे ने ते महीनियां बद्दी समा लगदा पिंड बासर के तो गंगा इशनान करना ते जाना जाके उत्थे दान पुन भी करना। उत्थे बड़े आराम नाल गंगा दा इशनान करके साधुआं महापुरुषां दे कोल भी बहना है। ते अज 20 वार जदों बाबा अमरदास जी गंगा तो वापस पे आउंदे ने ते रस्ते विच एक पिंड आया मेड़ा, जिसनूं पिंड मिठड़ा भी कहा जांदा है। इस पिंड दा एक बहुत ही स्याणा विद्वान पंडित है जिहड़ा ज्योतिष विद्या विच भी बहुत माहिर है ते इन्हे अपने घर दे विच एक मानो सरां दा ढंग तरीके नाल मकान बनाया है कि जितने भी यात्री गंगा इशनान करन जान ते जां गंगा इशनान करके वापस आउंदे होण उन्हां नूं जल पानी दी सेवा करनी, प्रसाद पानी उन्हां लई तैयार करना ते रस्ते दी थकावट दूर कर ली। जितने दिन भी कोई रहना चाहे ते ओह विद्वान पंडित अपने घर विच रखदा सी ते यात्रियां दा एक सुभाअ सी कि उहदे घर विच दो चार दिन आराम करन तो बाद जान लग्या उहदी तली ते कुछ ना कुछ माया जरूर रख जांदे सन भी चलो ये बंदा सेवा करदा है। बाबा अमरदास अज ये भी उस पिंड विच पहुंचे ने, उस पंडित विद्वान दे घर अंदर उहदी सरां दे अंदर उन्होंने बड़े आराम दे नाल जाके प्रसाद पानी छकिया। कह लगे गर्मी दे दिन सन ते बाबा अमरदास जी उहदे घर तों बाहर निकल के उहदे लवाए हुए बाग दे अंदर जाके टिक गए ते गर्मी अतदी पैंदी है। बाबा अमरदास उस रुख दी छां थले टिके ने ते किन्ने इस पंडित दा नाम सी दुर्गो, सार सुत भिंबी गोद दा सी। ए पंडित अपने घर तो बाहर निकलिया, बाग विच पए हुए यात्रियां दे कोलों लंघिया ते ज्योतिष विद्या दा माहिर किन्ने उसे वक्त इस पंडित ने ना बाबा अमरदास जी नूं लेटिया देखिया ते बाबा जी वक्खी परने हो के पए ने, चरणा दियां दोनों तलियां दिसदियां पईयां ने। विद्वान पंडित सी, बाबा जी दे चरणा दी तलियां विच उहने पद्म देखिया ते देख के सतगुरु के बाबा जी दे चरणा विच खलो गया। कहन लगा हे मना, मेरी विद्या कदी झूठी नहीं हो सकती, जे इहदे चरणा दे अंदर पद्म है ते एक गल ध्यान विच रखना, जां ते ए आउण वाले समें दे अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा
ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮ ਵਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਸੁਲੀ ਥੈਲੀ ਖੋਲੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਰਗੋ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਾਟ ਤੂੰ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੈਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਰੇਖਾ ਰੇਖਾ ਫਲੇਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਰੇਖਾ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਦਮ ਪੜਿਆ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤ ਲਈ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਣਾ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਖਿਰਦਾ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗੁਰਾ ਹੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਪਿਆਵਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਰ ਦੇਈ, ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸੋ ਜੇ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ, ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਗੁਰੇ? ਬਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਗੁਰੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਦੇਖ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
साहब कहिंदे ने जदों जन्म होया ना ते बचपन विच एक आस है जे कुछ दिन खेडण दे ने खाण पीण दे ने ते अजे मेरे ते जवानी आउणी है ते जवानी तो बाद इस मनुख नूं एक आस है कि पुत्र धीआं वड्डे होए अजे इन्हां दी कमाई नाल मैं सुख मानना मेरे ते बुढ़ेपा आउणा ते गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने उस बंदे नूं मैं पुछ के देखां जिन्हें बचपन का समा जवानी की इंतजार विच बतीत किया जवानी बुढ़ेपे दे आउण दे समय विच बतीत कर दिती हुण बुढ़ेपे तो बाद की आस ला के बैठा की मिलेगा ते पुछया सतगुरु तुसी दसो कहन लगे मेरा ते उत्तर इको ही फसल बीजिए एक आस है जे जमीन विचो निकलनी है अजे कच्ची कोमल फसल ने निकलना जेड़ी फसल जमीन विचो निकल आवे एक आस है अजे ने डटरी होना है अजे ने कच्ची अजे पक्की होना है ते जेड़ी फसल पक जाए ओदे ते इको आस है अज जा कल जिमीदार आवेगा अपने मजदूरां नू लिया के दातरियां नाल कट के इन्हां नू घर लै जाए। कहन लगे सजना तू तां परमेश्वर दी फसल है ध्यान रखी कि ए रब दी मर्जी है बचपन ओ कच्ची फसल ही जवानी डटरी फसल ही ते जदों केस कालियां तो चिट्टे हो गए उदों फसल पक चुकी है उदों तां सिर्फ इको ही आस है अज जां कल मौत जिमीदार ने आउणा है उन्हें इस फसल नूं कट के अपने नाल लै जाणा। पक्की हुई फसल केवल कट्टी जांदी है पक्की तो बाद की करांगे। हजूर ने बाणी विच क्या हरी नाहे ना डडरी ए दरते जे हरी फसल नहीं कट्टी गई ते डडरी दी आस ना करी हो सकदा डडरी तो पहला कोई कट के लै जाए। हरी नाहे ना डडरी पक्की वड्डन हार लै लै दात पहोतिया लावे कर तैयार जा हुक्म होवा किसान दा ता लुण मिणिया खितार जितन रब ने हुक्म कर दिता उदू बाद इस फसल नू वाढी जरूर पाएगी। बाबा अमरदास नू सिर्फ इन्नी कु गल ठोकर मार गई कि मना तू गुरु तो विछड़िया तू रब तो विछड़िया ते मैं कई बारी अर्ज करना हुन्ना जदों ए महसूस अंदर हो जाए ना बाणी पढ़दिया कि मैं रब तो विछड़िया वा मैं गुरु तो विछड़िया वा ते एक आस करियो कि परमार्थ का एक कदम आपा ने पट ले। दुनिया नू ता ए भी पता नहीं असी रब तो विछड़िया कि नहीं लोकां नू ता ए भी समझ नहीं मेरा गुरु की ते मैं गुरु तो विछड़िया वा। जिस बंदे नू एनी समझ पै जाए ठोकर वज के कि मैं अजे गुरु नाल नहीं जुड़िया जिस बंदे नू रोग का पता लग गया ओ वैद नू भी जरूर लभेगा जिस बंदे नू ए ही पता नहीं मैं रोगी हां उन्हें वैद कोल जाके करना की। बाबे अमरदास नू एनी कु समझ पै गई तू प्रभु तो विछड़िया ते गुरु कृपा करे हर बंदे नू ए समझ पै जाए। कबीर साहब ने बाणी विच इक पवित्र बचन कहा कहिंदे ने जदों शाम पैंदी है ना उन्हां ने उस वक्त दे समय नू मुख रख के बचन उचारिया कहिंदे ने शाम पैंदी है व्यापारी भी अपने टिकाणे ते रात नू आराम करदा है तुरन वाला राही भी किसे सराम विच रुक जांदा है जिमीदार भी शाम नू थक के घर आ के टिक जांदा है दुकानदार चाकरी करन वाले भी ज्यादातर रात नू घर आ टिकदे ने पर कबीर साहब कहिंदे ने रात नू सारे आराम करदे ने पर एक आवाज रात नू मेरे कन्नां विच गूंजदी है ते सोचना वा ए कौन है जिन्हू रात भी आराम नहीं ए रात भी उची उची पुकारदा है। ते कहिंदे ने जदों इस आवाज दी सेध नू मैं गया ते की देखिया एक चकवी बड़ी उची उची पुकारदी पई है पता नहीं कुदरत दा एक नेम है जदों शाम पैंदी है चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै जांदा है। विद्वान सज्जना ने बाणी विच इहदियां बड़ियां उदाहरणां ने दरियावां दे किनारियां ते पंछी रहिंदे ने जदों रात पैंदी है चकवी दरिया दे खब्बे नू चली जांदी है चकवा सज्जे नू चला जांदा है एक दूजे नू पुकारदे ने पर हैरानगी दी बात एक दूजे दी आवाज सुन के एक दूजे नू मिल जांदे ने मिलाप हुंदा इन्हां दा दरिया विच उड़निया खब्बा सज्जे नू चला जांदा सज्जा खब्बे नू चला जांदा है सारी रात चक्कर करते रहते हैं पर मिलाप हुंदा नहीं। बाबा कबीर कहिंदे ने मैं चकवी नू देखिया रात उची उची पुकारे मैं क्या सबर नाल टिक जा सारी दुनिया आराम कर दी तेनू चैन नहीं ते चकवी ने कहा जिदा प्यारा विछड़ जाए ओनू टिका ते चैन किथे
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਚੱਕਵੀ ਦੇਖ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਭਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਨੇਹ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੁਕਾਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿਛੜਦੀ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਇਵਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ

जे कुछ खान लगता है आवाज पैंदी है, देख तेरे केस कालियां तो चिट्टे हो गए, अजे भी नगुड़ा, ना इनू खाना चंगा लगता है ना सौना चंगा लगता है। भाई वीर सिंह लिखते ने तीन दिन ते तीन रातां इस बाबे ने बिल्कुल आराम नहीं किया, सारी रात इन्हें तुरते रहना, अखां विच नीर भरना, कदी रो पैना, कदी चुप कर जाना, ते इको गल कहनी अमरदास हो सकता हुण तां कंधी उत्ते रुकड़ा है, की पता पूरा गुरु मिले के ना मिले, ए भी जन्म तेरा चला गया। एक विद्वान सज्जन ने ना बड़े प्यारे बचन कहे ने, वो कहिंदा जदों किसे नूं बिरहा दा छल लगदा है ना फिर वह चैन नाल टिकदा नहीं। उस विद्वान सज्जन ने क्या कह लगे, जिहड़े बिरहा दे पुठे हुए जीव ने ना उन्हां दीआं नौ निशानियां ने जिन्हां नूं प्रीतम नाल मिलण दी तड़फ है। पुछया केड़ियां, कहन लगे पहली गल उन्हां दे चेहरे दा रंग कई वारी देखेगा ते पीला पै जाएगा, दूसरा वह ठंडे साह लैंदे ने होके लैंदे ने, तीजा लक्षण उन्हां दीआं अखां विचों पानी कदी नहीं सुकदा, चौथा लक्षण वह घट खांदे ने, पंजवां चिन्ह वह घट सौंदे ने, छेवां चिन्ह वह बिल्कुल घट बोलदे ने, सतवां चिन्ह वह प्यारे दी इंतजार भी चुके ने, अठवां चिन्ह उन्हां दा एवें इक्को दम कई वारी इंतजार भी तड़प उठदे ने, ते नौवां चिन्ह उन्हां दा अपने मत्थे ते हथ रख के किन्ना किन्ना समा सोचदे रहिंदे। सियाणे विद्वान सज्जन ने लिखिया, कहन लगा आशकारा नौ निशानी ऐ पिसर, आहे सरदो रंग जरदो चश्म तर, कम गुप्त नो कम खुरद नो खवाबे हराम, इंतजारी बेकरारी दस्ते सर। उन्हां दे नौ लक्षण ने जिहड़े प्रीतम तो विछड़े। बाबा अमरदास नू तीन दिन हो गए ने टिकाओ नहीं, आवाज कन्ना विच गूंजदी तू नगुरै, अज तीजे दिन जदों अमृत वेला होया ते अपने बिल्कुल भरा दी कंध विचों एक आवाज सुनाई दित्ती, नाल दे घर विच मदाणी पई, मदाणी नाल दुध रिड़कन दी आवाज सुनाई दित्ती, ते उस मिठी आवाज मदाणी दी आवाज नाल मदाणी रिड़कन वाली उस बीबी दी आवाज शुरू होई, गला सुरीला सी, प्रेम विच भिज्जा सी, उदन मदाणी दी आवाज ते उदन आवाज आउण लगी, मारू महला पहला करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला तो लेख पए, ए शब्द दी आवाज कन्ना विच पई, ते बाबे अमरदास नूं इंज प्रतीत होया जिवें किसे ने डिगे हुए नूं आसरा दे दिता है, जिवें किसे ने जख्म ते मलम ला दिती, ते कहिंदे ने बाबा अमरदास कंध दे नाल कन्न ला के सुन लगे, ते बीबी शब्द पढ़ी जा रही सी, चित चेतस की नी बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, पढ़दी पई सी जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती, शब्द पढ़दिया पढ़दिया बीबी दे बोल इथे आ गए, काया आरन मन विच लोहा, पंच अग्न चित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई, भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमृत ओ देवै तो नानक त्रिश्त सदेहा। जदों शब्द दा प्या भोग ते इस बाबे दियां अखां विचों नीर दी झड़ी लगी, कंध नूं पार करके दरवाजे रही घर विच पहुंचिया, ते पिछों आवाज देख के कहन लगा, बचड़िए अज तू मैनू डिगे नूं आसरा दिता है, मैनू ठठे नूं सहारा दिता ई, मेरे जख्मां उत्ते तू मलम ला दिती, मेरे तड़प दे अंदर तू अमृत दे छत्ते मार दिते, ते जदों बीबी ने शब्द सुनिया बचड़िए ते तड़प के पिछे देखिया ते कौण है, ओदे सहुरे दा वड्डा भरा है बाबा अमरदास, ते कोल जाके कह लगे, धीए घबरा ना, देख मैं अजे तक नगुरा हूं, मेरा गुरु कोई नहीं, सट मार गया सी कोई, इलाज नहीं हूं दस के गया, चोट किसे ने मारी, इलाज तेरे शब्दां विचों नजर आया, तू दसेगी जो कुछ गाउंदी सै की सी, ते ओ बीबी कोई होर नहीं, गुरु अंगद साहब की सपुत्री है बीबी अमरो, जेड़ी बाबा अमरदास जी दे सके भतीजे नाल व्याई है, ते उस वक्त कहन लगी, पिता जी ए कोई आम गीत ते कविता नहीं, ए बाणी है मेरे गुरु नानक दी, ते मैं एक अर्ज करदिया सिर्फ एक खिन निकलन लगा,

बस एक मैं बेनती करा, अमृत दे अमृत सार दे ते खंडे बाटे दे अमृत ते बाणी ते शक ना करियो। जदों तुसी जांदे हो इत्थों भावें महापुरश आउंदे ने उहनां दे स्थानां ते जी सदके जाओ। जे गुरु नानक साहिब दी सिक्खी नूं प्यार करदे हो गुरु रामदास दे चरणां विच मत्था टेकणा कदी ना भुल्लो। हरिमंदर साडा धुरा है। खैर हजूर ने सवैया तो बाद आई चौथी बाणी चौ पई। कह लगे सजना जप कीता होवे जाप कीता होवे प्रेम कीता होवे ते इहदा वी मान नहीं करीदा ते बेनती करिया करी खमरी करो खास दै रछा पूर्ण होए चित की इच्छा की इच्छा तब चरणन मन रहे कुमारा अपना जान करो प्रतपारा। आखिर ते फिर गल की सजना रोजे बेनती करी के एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए उभारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत कृपाण पकड़न वालिया खड़ग केत मैं शरण तुहारी आप आगे लोहारी मेरे ते मिरका कृपा कर। जदों चौप ही पड़ी साहब ने खीर ते संपूर्णता कीती सजना गुरु दे दर तो पिते किते जाई ना जप दिता जाप पढ़िया सुधा सवैये पढ़िए चौपई दा पाठ कीता आखिर ते सिख नूं आनंदपुर दा वासी बनाना सी। अमृत दी विचार आरंभ कीती सी। अमृत दा अर्थ ये वे कि जिदे उत्ते मौत दा भय नहीं आनंद विच टिकाणा सी। पंजवी बाणी पढ़ी गई आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। नाल क्या सजना जे आनंद लैणे कदी मन नूं गुरु तो दूर ना करी। ए मन मेरिया तू सदा रो खरनाले मन नूं समझाण लग्या कि आनंदपुर दा वासी बनी ते चलाकी ना वरती। एक विद्वान ने बड़े सोहने शब्द कहे ने आनंदपुर साहिब नूं रस्ती दो जांदे सन उस वेले। एक ये ना समझो कि किसी दे शहर ते तल क्यों गल करन दा टंग है। एक हुशियारपुर दा रस्ता सी ते एक कीरतपुर दा रस्ता सी। चेते रखी आनंदपुर जाण दे रस्ती दो ने जोगा हुक्म मन के तुरे है। जदो हुशियारपुर दे रस्ते ते आए अंदर दी चलाकी ने राह विच रोक लिया। जे आनंदपुर नूं जाणी ते कीर्ति दे रस्ते वर्गा होर सौखा रस्ता ही कोई। कीर्ति दा रस्ता है जिहड़ा अनंत ते लै जाएगा। साहिब ने कहा रब ना रही पर मना चलाकियां ना वरती क्योंकि ए मन चंचला चतुराई किना ना पाया। नाल क्या जे चलाकी नहीं मता जिया ते माण करके कही जाए ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ध्यान दिया। जे फिर गल करदिया करदे मैं चूक मात्र चल रहा अखीर ते अमृत दी गल आई। कह लगे अमृत ओना अखा विच जिन्ना विच पै जाए ओना नू विश भी खरी का रूप लगदा है। अमृत जिन्नू मिल जाए ओदे कन्ना विच भी सच दी बाणी जांदी है ते हकीकत एवे अमृत जिन्नू मिल जाए ओदी रसना भी आंदला छड़ दिंदी है। अमृत जिन्नू मिल जाए अखीर दियां पौड़ियां कईआं दसम द्वारे विच रोज अमृत चकदा हुंदा। बुरखा तेनू ये पंज बाणियां जिहड़ियां अमृत दियां पढ़ियां एवे नहीं कि पंज बाणियां पढ़ दित्तियां जी ओ नहीं एक एक बाणी का सिद्धांत दिता। अखीर ते शब्द वरते के खर जियो गुफा अंदर रख के बाजा पवन बजाया बजाया बाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। तवजो ज्या दे दसवां गुप्त रखाया ते महाराज उस गुप्त तक किवें जाने। कहन लगे कि योग साधना नाल कि प्राणायाम नाल कि जल धारिया नाल कि निवली कर्म करके कि सन्यासियां वाले बाणे धारण करके। मेरे गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा ते गुरु कलगी दर बाणी पढ़द्या कहिंदे ने सिखा जे दसम द्वार तक जाने ही ते चेते रखी प्राणायाम नहीं उस अमृत नूं चखनी ते गुरु ते भावना बना लवी बस हुक्म मन्नी। कहन लगे प्यारे के हर जियो गुफा अंदर रख के पाठ कथा नहीं कर जियो हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरु द्वारा लाए भावनी और जिदी गुरु दे चरणा विच भावना बन जाए इक ना दसवां द्वार दिखाया तै अनेक रूप नौ नव निद तिस दा अंत न जाई पाया। अखीर दी पौड़ी जदो आई कह लगे आनंदपुर जांदिया सोहले गांदे जाई ए साचा सोहला साचे कर गावो गावो ता सोहला घर साचा।

जे तेरे सामने सिखा कि ते दौलत वाले आउन ते अमृतधारी सिखा उन्होंने कान ना मनी क्यों कहन लगे जीत पर सब देश निशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूर गजान के सुंदर खिलसत है राजा जारे भूत भविख भगवान के भुगत कौन गने नी जात बिचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सदारे मर के चले गए जमा दे घर तू का कारक मनी हे गुरु कलगी वालिया पहला तुसी जप क्या फिर तुसी जाप क्या हुण सवैया विच साना कोई दसना चाहते हो तवजो दियो अमृत की तीजी बाणी सी सवैये कह लगे मैं तेन दसना चाहना वा भावे जप करी भावे नमस्कार करते हैं जाप करी जप ते जाप ता प्रवाने के साज कहूं सुन ले वो सबै जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रापायो प्रेम करी तवजो दियो हुण चौथी बाणी आई चौ पई सहब वेखो मैं पिछली बारी एक किते कर्ज करके गया सां सिख नू तोप सिख नू तलवार सिख नू गोलियां फांसियां कोई भी खत्म नहीं कर सकती पर जदों भी जगियासू की मौत हुंदी है अपने मुर्शद उते शक करके हुंदी सच जानी जदों अपने मुर्शद ते शक आ जाए सोहनी रोज चना नू तरदी सी मैं सिर्फ संकेत विच अर्ज करा भावे कच्चा भांडा सी एक दिन मन विच आया सी कि इश्क ता प्यार ता है पर ओदी अख दे विच इक छोटा जिहा दाग है एक छोटे जे दाग दे शक ने सोहनी नू डोब के रख दिता बस एक मैं बेनती करा अमृत ते अमृत सर ते ते खंडे बाटे दे अमृत ते बाणी ते शक ना करियो जदों तुसी जांदे हो इत्थों भावे महापुरश आउंदे ने उहनां दे स्थानां ते जी सदके जाओ जे गुरु नानक साहिब दी सिक्खी नू प्यार करदे हो गुरु रामदास दे चरणां विच मत्था टेकना कदी ना भुल्लो हरिमंदर साडा धुरा है खैर हजूर ने सवैया तो बाद आई चौथी बाणी चौ पई कह लगे सजना जप कीता होवे जाप कीता होवे प्रेम कीता होवे ते एदा भी मान नहीं करीदा ते बेनती करिया करी खमरी करो खात दे रचा पूर्ण होए चित की इच्छा की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा आखिर ते फिर गल की सजना रोज बेनती करी के एक बार जिनतो मैं संभारा काल पास ते ताए उभारा जिन्नर नाम तिहारो का दार्द दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत कृपाण पकड़न वालिया खड़ग केत मैं शरण तुहारी आप आगे लोगारी मेरे ते मिरका कृपा कर जदो चौप ही पड़ी साहब ने खीर ते संपूर्णता की सजना गुरु दे दर तो किते किते जाई ना जप दिता जाप पढ़िया सुदा सवैये पढ़िए चौपई दा पाठ कीता आखिर ते सिख नू आनंदपुर दा वासी बनाना सी अमृत दी विचार आरंभ कीती सी अमृत दा अर्थ ये वे के जिदे उते मौत दा भय नहीं आनंद विच टिकाणा सी पंजवी बाणी पढ़ी गई आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया नाल क्या सजना जे आनंद लैणे कदी मन नू गुरु तो दूर ना करी ए मन मेरिया तू सदा रहो खरनाले मन नू समझाण लग्या कि आनंदपुर दा वासी बनी ते चलाकी ना वरती एक विद्वान ने बड़े सोहने शब्द कहे ने आनंदपुर साहिब नू रस्ती दो जांदे सन उस वेले एक ये ना समझो कि किसी दे शहर ते तर क्यों गल करन दा टंग है एक हशियारपुर दा रस्ता सी ते एक कीरतपुर दा रस्ता सी चेते रखी आनंदपुर जाण दे रस्ती दो ने जोगा हुक्म मन के तुरिया है जदो हशियारपुर दे रस्ते ते आए अंदर दी चलाकी ने राह विच रोक लिया जे आनंदपुर नू जाणी ते कीरती दे रस्ते वर्गा होर सौखा रस्ता ही कोई कीरती दा रस्ता है जेड़ा अनंतम ते लै जाएगा साहब ने कहा रब ना रही पर मना चलाकिया ना वरती क्योंकि ए मन चंचला चतुराई किना ना पाया नाल क्या जे चलाकी नहीं मता जिया ते मान करके कही जाए ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ध्यान दे आजे फिर गल करदिया करदे मैं चूक मात्र चाड़िया अखीर ते अमृत दी गल आई कह लगे अमृत ओना अखा भी जिन्ना विच पै जाए ओना नू विश भी खरी का रूप लगदा है अमृत जिन्नू मिल जाए ओदे कन्ना विच भी सच दी बाणी जांदी है ते हकीकत एवे अमृत जिन्नू मिल जाए ओदी रसना भी आंदला छड़ दिंदी है अमृत जिन्नू मिल जाए अखीर दियां

और की है। आखिर देश का एक अंग है ना, तो मेरे हाथों च पीड़ा होवे ते अखां रोंदिया ने। मैं फिर अर्ज करा, पंजाब देश दे हाथ ने, ये हाथ अन्न देंदे ने, ये हाथ रक्षा करदे ने देश दी। और जे इस हाथ नूं कमजोर किया गया, देश की रक्षा भी नहीं होनी, क्षमा करनी, मूंह विच अन्न भी नहीं पैना। इते देश दियां बावां ने, ये देश दियां बावां ने, ये देश दे हाथ ने। पर क्षमा करनी, बदकिस्मती यो है कि जिहड़ा राज सिंघासन ते बैठता, उहदी खुशी इसे गल दे च है कि पैरां दे थले मेरे हाथ होवन, ते हाथ भी मेरे पैरां दे थले होवन। ते कौन दसे कि जे हाथ पैरां दे थले हो गए, ते याद रखना देश दी रक्षा होनी है, ते ना देश दे मूंह विच अन्न पएगा। हाथ ते सुतंत्र ही रहणगे तां ही गल बणेगी, हाथ ते खुले ही रहणगे तां ही गल मन्नेगी। ते पंजाब दी मंग की सी, इन्हां हत्थां दी मंग की सी, सानू खुले रहण दो, बस इन्नी गल है। और की हाथ कोई शरीर नालों टुटना थोड़ी चाहते सन, ते टुट के करना भी की है हत्थां ने, इन्नी भी मैरज करदे आ। ये बावां देश दे नाल रहणियां चाहुंदियां, इस शरीर दे नाल रहना चाहुंदियां सन, लेकिन गजब दी गल है, शरीर ही आखे कि फिर पैरां दे थले रहो, बावां ए हथ पैरां दे थले रहो। और गजब दी गल है कि इस देश दे च बाकी दे अंग कोई रोए नहीं, किसी ने दुख नहीं प्रगटाया। हां सिर्फ बावां ही रोईयां जिहड़ियां थले आईयां, जो कुचलियां गईयां, जो पैरां दे थले मसलियां गईयां, वो बावां जरूर रोईयां, बाकी किधरे कोई दुख तकलीफ ते पीड़ा दी गल नहीं। बल्कि जानवरपणा, जालमपणा, दैतपणा इतना कि लड्डू वंडे गए ते घ्यो दे चराग जलाए गए। लानत है इन्हां बंदियां ते जीवन दा ढंग, भई हद हो गई, तेरियां दो बावां कमजोर हो जान, तू लड्डू वंडेगा, तू दीवे जलाएगा। पंजाब ते देश दा अंग, ते देश दा हिस्सा है, पर गजब दी गल है, ये कितनी वड्डी मूर्ता कि शरीर दे अंग नूं कोई अंग ही ना समझे, ये बहुत वड्डी मूर्ता होती है। ते जद कोई अंग नहीं समझदा, तो फिर उसनूं दबांदा है। तो मैं इस करां, तुलसी एक बड़ी महान गल करदे ने संत दे हिरदे दी। ओ कहिंदे ने, संत रिराव नव नीत समाना, कहा कवने पर कहा न जाना। संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है, नवनीत कहिंदे ने मक्खन नूं, मक्खन दी तरह है। संत ते मक्खन एक ने। फिर एकदम ख्याल आया तुलसी नूं, भई जिहड़ा मैं प्रमाण दिता है ना, गलत दिता है, ठीक नहीं दिता। संत लोग प्रमाण ते देंदे ने, फिर बाद विच ख्याल आंदा है प्रमाण पूर्ण नहीं है, मुकम्मल नहीं। ख्याल आ जाता है, जैसे मैं भाई नंद लाल नूं पढ़दा, उन्होंने दो प्रमाण दिते ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी दे उत्ते, बोलां दे उत्ते, ते फिर अपने दिते हुए प्रमाण नूं ही वापस लैंदे ने, भई ये जो मैं गल आखी है मैं वापस लैंदा, ये उन्हां दी इक गजल है। भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे ने, मिसले दहाने तंग तो तुंगे, शकर न बाशद दीवाने गोया। भाई साहब भाई नंद लाल बड़े कीमती बचन ने आप दे। तो मैं भी सिख जगत विच एक बदकिस्मती देखदा, अगर परशियन दा बोध बिल्कुल हट गया तो नंद लाल नूं किवें समझांगे, नंद लाल नूं किवें जाणांगे कि नंद लाल ने की आखिया से, नंद लाल की बोलता रहा। खैर मुख्तसर अर्ज करा, मिसले दहाने तंग तो तुंगे, शकर न बाशद। मिसले मिसाल, ऐ कलगीधर पातशाह, थोड़े बुलां दे चों जो बचन निकलता है, थोड़ी रसना दे चों जो पावन बाणी निकलती है, कलाम निकलता है, तुंगे शकर न बाशद, उस एक बचन दी तुलना देते एक बोरी जिहड़ी खंड है ना, वो कुछ भी नहीं। मिसाल दित्ती गई,

सिद्धि भाव शरीरक सुख मानसिक सुख ते अध्यात्मक सुख सारे सुखा की प्राप्ति हुई गुरु दे शब्द दे विचार करदे आ करदे आ। हां जी साधुआं दी संगत करदिया करदिया गुरु दी संगत करदिया करदिया जितनी भी पाप दी मैल से सारी दी सारी उतर गई लै गई। हां जी और इस तरीके दे नाल जद पवित्र होए ते अकाल पुरख अंग संग हो गया साथी बन गया मददगार बन गया। हां जी गुरु दी बख्शिश दा सदका रहमत दा सदका नाम दा जप कीता प्रभु दी बाणी पढ़ी। हां जी ओ जो अनादि अकाल पुरख है परिपूर्ण परमात्मा है फिर उसकी प्राप्ति हुई ओ सानू मिलिया। इथे तक शब्द दे विचार शब्द दे भाव अर्थ और अखरी अर्थ तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने जो है मैं रखे ने। हुण मैं 15-20 मिनट थोड़े होर लेने ने उस तों बाद श्री अखंड पाठ साहब का भोग पवेगा। प्रोफेसर दर्शन सिंह ने ते भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह ने आप नूं कीर्तन दीआं धुनां दे नाल निहाल करना है ते अगला प्रोग्राम प्रबंधक साहिबान सिंह साहिबान थोड़े सामने जो है रखणगे। 15-20 मिनट मैं थोड़े होर लवां। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने पावन पवित्र बाणी विच फरमान कीता है कि मनुख दा मन ते तन ए दो वजूद ने अलग अलग असी दो रूप रखते हां एक नहीं। कई दफा साडा तन कुछ होर कहिंदा साडा मन कुछ होर कहिंदा जबान बाणी पढ़ रही हुंदी मन नहीं पढ़दा। कई दफा मन पढ़ रहा हुंदा जबान खामोश हुंदी है। तन ते मन दो अलग अलग वजूद ने ए दो अलग अलग दुनिया ने साडियां ते जद दुनिया अलग अलग ने हर मनुख दियां तां इन्हां दो दुनिया दे उत्ते राज प्रबंध भी वख वख ने। शरीर दी दुनिया दा राज प्रबंध वख ते मानसिक मंडल दा राज प्रबंध वख। कहिंदे ने मन विच उदों तब्दीली आ जांदी है क्रांति आ जांदी है जद राज प्रबंध बदल जांदा है। किसी भी देश विच पलटा उदों आंदा है जद राज प्रबंध बदलदा है पलटदा है इहदे नाल तब्दीली आ जांदी है क्रांति आ जांदी है। ते सारी दुनिया विच वख वख तजर्बे कीते गए किधरे शख्सी हुकूमत किधरे सोशलिज्म कम्युनिज्म किधरे डेमोक्रेसी जमहूरी प्रजातंत्र ए वक वक तजर्बे कीते गए ताकि बंदे नू बैरूनी सुख मिले बंदे नू अंदरूनी चैन मिले ए भी वक वक तजर्बे कीते गए। हर एक युग दे अपने अपने ढंग नाल तजर्बे कीते गए जैसे सतगुरु कहिंदे ने सत जुग सत त्रेता जगे द्वापर पूजा चार तीनों जुग तीनों दड़े कल केवल नाम आधार। मन नूं सुकून मिले मन नूं चैन मिले किसे वक्त पूजा पाठ दी गल तीर्थां दे रटन दी गल हवन यज्ञ दी गल संजम ते जत दी गल ए वख वख तौर तरीके अपनाए गए कि बंदे दे मन नूं सुख मिले बंदे दे तन नूं ते इहदियां बैरूनी लोड़ां जिहड़ियां ने सहूलियत नाल सौखे ढंग नाल इस नूं प्राप्त होवन ते बारों भी कुछ यतन कीते गए। एक यतन ओ जो वैद लोगां ने कीता एक यतन ओ जो राजनीतिक लोगां ने कीता कि बंदा शरीरक तल ते सुखी रह सके शरीर दे च कोई बीमारियां ना आवन। इस देश दे च पुराना तरीका आयुर्वेदक सी ओ तब्दील होया यूनानी इलाज आया भी देखा गया आयुर्वेदक ढंग नाल इलाज करदियां सारियां बीमारियां नहीं जांदियां कुछ बीमारियां रह जांदियां ने तां फिर यूनानी तौर तरीका प्रचलित होया। यूनानी तौर तरीके तो बाद फिर अंग्रेजी इलाज आया एलोपैथी आई ते फिर देखा गया ये भी कई रोगां दे उत्ते कारगर नहीं साबित होंदा होम्योपैथी आई अजकल नेचरपैथी का बड़ा जोर है। ये सारे तजर्बे वख वख सियाणे लोगां ने वैद लोगां ने कीते कि बंदे दे शरीर दे चों किसे तरीके नाल रोग कढ़ीए ते बंदा शरीरक तल ते स्वस्थ हो सके। बंदे दी आर्थिक लोड़ां ते बंदे दा समाजिक ढांचा सुखी रह सके वख वख तौर तरीकों नाल राजनीतिक लोगों ने प्रबंध बनाए कानून बनाए विधान बनाए। पिछले दिन एक बहुत वड्डे सिख जगत के मुखी बंदे ने कलकत्ते विच किधरे कहा क्योंकि कलकत्ते दे सिंघां ने मैनू इस तरह आख्या भई उह कहिंदा कि रहतनामा नहीं सुनाना चाहिए सिर्फ बाणी पढ़ो गुरुआं ने बाणी उच्चारण की रहतनामे ते बंदियां दे ने लिहाजा रहतनामे नाल साडा की मतलब है।

लेकिन यह भी ठंडी पै गई क्योंकि बंदे नू निरी सिद्धि नहीं चलती। बंदे नू चाहिदी है परमात्मा की सिफ तो सलाह ते परम आनंद समाह दी। सिर्फ उम्र लंबी कर लेना यह तो कोई मायने नहीं रखता। तो करामात है कि महाराज कहने साह सिद्ध साह करामात है अचिंत करे जिस दात अचनचेत उजड़ियां दातां दे रहा है बस एक करामात है। और की चाहिए पवन वग रही है सूरज की रोशनी पे मिलती है वगदे हुए दरियावां चो जल पिया मिलता है रिजिक पिया मिलता है करामात नहीं तो होर की। तेनू बच्चे मिल गए पत्नी मिल गई पति मिल गया भरा मिल गए संबंधी मिल गए दातां ये करामात नहीं तो होर की। होर तेनू कि करामात चाहिए एक एक चीज इतने करामात है एक एक दात का इतने कोई जो है मुल नहीं सा सिद्ध सा करामात है अचिंत करे जिस दा जिहड़ी वस्तु वो दाता अचनचेत झोली च पा देवे बस एक करामात है और कोई करामात नहीं। मुख्तसर अर्ज करा लमकावां ना योगियां दी लहर ठंडी पै गई इन्हां करामातां विच पहले लोकी फसे रहे पर देखिया करते तो दूर आ कृत नाल जुड़ गए पदार्थ नाल जुड़ गए परमात्मा ते दूर पदार्थां दे सुखां नाल जुड़ गए समाधि दा परम आनंद ते दूर। योग मत दी लहर भी ठंडी पै गई इस देश दे च भगती दी लहर चली ते इस लहर दे बानी सन भगत कबीर और महाराष्ट्र दे सन संत तुकाराम नामदेव। पूर्वी भारत दे च कबीर ने बेड़ा चुकया दक्षिण भारत दे च नामदेव ने भारत दे कोने कोने दे च भगत पैदा होए। भगतां दी बकायदा एक लहर चली इस लहर दी लपेट दे च करीबन करीबन अद्धी तो ज्यादा दुनिया इस देश दी आ गई। लोगों का भगती भाव दे च विश्वास हो गया छड़ो योगियां दे कर्म कांड छड़ो महात्मा बुद्ध दी साधना छड़ो ओ लीला परशोत्तम दी रास लीला छड़ो श्री राम दी ओ कोरी मर्यादा जिहदे च दुख ही दुख है। भगती भावना नाल भगती करो गीत गाओ। पर मैं अर्ज करा यह लहर भी ठंडी पई इस दे ठंडे होने दे दो कारण एक ते भगती दी लहर दे च 99% वह भगत है जिन्हां नूं इस देश का ब्राह्मणी समाज ते ब्राह्मणा दे दित्ते हुए संस्कार शूद्र कहिंदे सन। तो स्वर्ण जाति के जिहड़े लोग सन उच्चे वह इन्हां दे कदमां दे च बैठण तो इनकारी हो गए। इस वास्ते जितने जुलाहे सन वह ते कबीर दे आले दुआले कट्ठे हो गए बाकी नहीं। जितने नाई सन वह सैण दे आले दुआले कट्ठे हो गए बाकी नहीं। जितने चमार सन उन्होंने रविदास नूं संत ते गुरु करके मन लिया बाकी उसके आले दुआले ना आ सके। जितने छींबे सन वह नामदेव दे आले दुआले खड़े हो गए। मैं इत्थे चंडीगढ़ देखे एक नामदेव भवन ते बैठे सारे गुरु के सिख सन। मैं एक गल की है कहन लगे ये छींबे सन पिछे कपड़े छिंबदे हुंदे सन तो इन्होंने हुण नामदेव भवन बना लिया गुरुद्वारे की थां ते नामदेव भवन। साउथ हाल यूके विच मैं देखिया उन्होंने गुरुद्वारा गुरु रविदास करके बना प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का गुरुद्वारा गुरु रविदास। मैं इस नाम की किस तरह लोड़ पैगी कहन लगे सारे चमार। मैं इत्थे ही आके जे चमारी का लकब जुड़िया इन्हां दे नाल हट नहीं सके दिते ब्राह्मणा दे संस्कार नहीं मिटे मौजूद और यह संस्कार इतने प्रबल सन कि सिर्फ जुलाहे ही कबीर दे आले दुआले कट्ठे होए बाकी नहीं। बाकी आए तो दूर दूर रहे नेड़े नहीं होए नेड़े जुलाहे होए। रविदास दे दूर ही रहे ब्राह्मण खत्री वैश नेड़े गए ते चमार गए गुस्ताखी माफ। ए भगत ए लहर एक ते नाकाम हुई इस कारण करके कि देश दियां सरण जातियां इन्हां दे नेड़े ना आईयां इन्हां तो आत्मक आनंद दियां लहरां ना प्राप्त कीतियां। ते दूजा भगती बड़ी प्रबल सी शक्ति नहीं सी अंदरूनी ताकत सी बैरूनी नहीं सी। तो जैसे बोधि मिट गए भगती दी लहर भी ठंडी पई इधर भगतां दी लहर ठंडी पई ते अकाल पुरख रहमत दे घर दे च आके इस रूहे जमीन दे गुरु नानक नूं भेजदे ने उन्होंने सिखी दी लहर चलाई मर्यादा परशोत्तम दी लहर लीला परशोत्तम दी लहर और बोधियां दी लहर जोगियां दी लहर भगतां दी लहर तो बाद इस देश विच लहर चली सिखी दी। जगन्नाथपुरी तो भी लोकी आउंदे सन बिदर तो भी लोकी आउंदे सन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतना प्रताप देश दे कोने कोणियां तो

जगत से बरसद जगत उत्ते इंज रोशनी रहा तो वह जड़ा एक है वह सत है वह जड़ा एक है वह ओंकार है वह जड़ा एक है वह सत है और वह जड़ा एक है वह गुरु है चानना देने वाला है प्रकाश देने वाला है ज्ञान देने वाला है और वह जड़ा एक है वह प्रसाद है दयालु है दया की मूर्ति एक तो गल आरंभ होती है मूल मंत्र दी ते प्रसाद ते समाप्ति होती है पूरा मूल मंत्र मूल मंत्र दा पहला अखर एक अखीरला प्रसाद वो जो एक है सरबत गुणा दा मालक है सरबत शक्ति दा मालक है ओदा विशेष ते मूल गुण है प्रसाद दयालु बख्शिंद उदे च कठोरता नहीं है उते सदीवी बख्शिश करता है यह गल वखरी मैं अखां बंद कर लवा ते सूरज की रोशनी नाल मेरा संबंध टुट जाएगा लेकिन इहदा इह मतलब ते नहीं कि सूरज की रोशनी नहीं रहेगी उते रहे उते है सूरज की रोशनी ते है इसे तरीके नाल मैं पिठ मोड़ के बैठ जावा मैं उस परम शक्ति नूं भुला के बैठ जावा उदी बख्शिश नाल मेरा संबंध टुट जाएगा बख्शिश ते उसकी है बख्शिश ते उसकी सदीवी बरसरी सतगुर सदा दयाल है भाई ए नहीं कि सवेरे दया करदा ते शामी नहीं सदा दया करदा ते सद बख्शिंदा है सदीवी जो है बख्शिशा देंदा है तो वह एक है वह ओंकार है वह सत है वह गुरु है वह प्रसाद है ये शब्द का वार का मंगलाचरण है अगे आप सरवण करो हां जी काव्य रचना जिहड़ी है उन्हूं सलोक आखदे ने काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे जिहड़े ने दोहरे सलोक और छंद पदे मंगल ये काव्य शैली है बकायदा जिवें उर्दू दे च गजल है नजम है किता है रुबाई है इस तरह गुरबाणी जिहड़ी काव्य शैली है ये सलोक ने दोहे ने और सवैये ने बाद अपना पूर्ण गुरमत साहित देखी वे कवितवी है गए ने सवैये है ने छंद ने और तरह तरह के पदे ने ए गुरु घर की काव्य शैली है तो यह जी अगली काव्य शैली है इस सलोक कहें साहेब गुरु अमरदास जी महाराज का उच्चारण किया हां जी

वक्त मौजूद सी। ये भगत समकाली ने इको टाइम दिच रहे ने, नामदेव, त्रिलोचन, सदना, सैन, कबीर, रविदास, ये सारे इको ही वक्त ने। और ये सबूत थानू मिलणगे भगतां दी बाणी च। एक भगत दूसरे का जिक्र करता, दूसरा पहले का जिक्र करता, एक दूजे का जिक्र करते हैं। एक निक्का जिहा उदाहरण मैं दे दिया, गल स्पष्ट हो जाएगी। कबीर जी का श्लोक है, श्लोक जिहड़े तुसीं पढ़दे हो, उन्हां श्लोकां विच कबीर कहिंदे ने, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखे रविदास। ये श्लोक कबीर का, रविदास का नहीं है, श्लोक कबीर का। कबीर कहिंदे ने जो रविदास है ना, सच कह रहे है कि हरी जैसे हीरे नू छड़ के जिहड़ा किसे होर आसा दे उत्ते अपनी जिंदगी बतीत करता है, वह दोजकां च जाणगे, दुखी होणगे। उन्होंने आसा राम की नहीं रखी जिन्होंने, दुखी होणगे। हुण इस तरह की पुकार की रविदास ने, ते रविदास की पुकार नू कलम बंद किया, शब्द बंद किया कबीर ने अपने शब्दों विच। श्लोक कबीर का है, ख्याल रविदास देना। इसे तरीके रविदास कहते ने, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनोरे संतो हर जीते सबे सरे। हुण ये अपने शब्द विच कबीर का जिक्र करता है, नामदेव कबीर त्रिलोचन, कबीर अपने शब्द विच रविदास का जिक्र करता है। दोहां दे संकाली समकाली होने का सबूत, ते मैं भी अर्ज करा, सारे भगत एक दूजे का नां लैंदे ने। नामा माया मोआ कहे ते लोचन मीर, काए छीपो छाए प्यो दे संस्कारां नाल कबीर दे संस्कारां दा तालमेल नहीं बैठिया, उन्हें जीवन दा ढंग कुछ होर लभ लिया। पर रविदास कहिंदे ने इसका जन्म जिहड़ा है ये उस कुल दे च होया जिथे बकरीद मनाई जाती है। गल स्पष्ट हो गई, गल खुल गई। हुण इतना वड्डा विद्वान बनारस दे च पैदा हो जाए, ते ब्राह्मणा दा दावा सी विद्वान ते सिर्फ ब्राह्मणा च ही पैदा होंदे ने, किधरे होर पैदा नहीं होंदे, ते हुण ब्राह्मण अपना बचाव किस तरह करन, खिमा करने। वह कहण लग पए, नहीं जी, इहदी मां ब्राह्मणी सी, वह किधरे सुट गई सी इसनू गंगा दे तट ते, इह नीमू नीरा चुक के लियाए ने, इन्हां ने पालिया, इन्हां ने अपनी कुख तो जन्म नहीं दिता, इह ते चुक के लियाए ने। इंज कहानी जोड़ दित्ती, भगत माल विच भी जुड़ गई, मक्खी दे उत्ते लोकी मक्खी मारी गए, लकीर नू पिट दे गए, हकीकत कुछ भी नहीं, सच्चाई कुछ भी नहीं। सच्चाई ये जो गुरु ग्रंथ साहिब विच मिलदी, जो इतिहास खिमा करनी है, गुरबाणी की कसवटी ते पूरा नहीं उतरदा, गुरु का सिख कह देगा गलत है, गल खत्म। ऐ इतिहास की धारा गुरबाणी ते पूरी नहीं उतरती, गुरबाणी साडे कोल कसवटी है, ते जे कसवटी मौजूद है ते सोने नू परख लईए वी सोना शुद्ध भी है कि नहीं। कबीर की यह साखी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध ए है जो रविदास कह रहे ने और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे जो शब्द मौजूद ने, जाके ईद बकरीद कुल गौ बध करे, मानिए शेख शहीद पीरा, जाके बाप ऐसी करी पूत ऐसी श्री तोहलो रोग प्रसिद्ध कबीरा। तो हुण इतना वड्डा आलम फाजल पैदा हो जाए ते कहानी जोड़ दिती गई नहीं, ये ते बामणी का पुत्र है, फिर रविदास हो गया आलम फाजल। हुण इहदे नाल की जोड़न, नहीं जी, ये भी ब्राह्मण सी ते रसोईया सी स्वामी रामानंद दा पिछले जन्म ही सी। ब्राह्मणा नू अपना पिछला जन्म दिखाई नहीं देंदा, रविदास दा दिखाई दे दिता। ए जी पिछले जन्म स्वामी रामानंद दा रसोईया सी। भगत माल तुसी लै लो कि बाजार माई सेवा तो, यही कहानियां मक्खी ते मक्खी मारी गई, असलियत कुछ भी नहीं, हकीकत कुछ भी नहीं। गुरबाणी इसकी पुष्टि नहीं करती, गुरबाणी तस्दीक नहीं करती। रविदास नूं क्यों ब्राह्मण साबित किया गया? चमार जुतियां गंढदा पिया, टके टके जुती गंढदा, इन्ना वड्डा आलम फाजल। और इतना वड्डा आलम फाजल के जिहड़ा वेदां दा मुखी पंडित पुरोहित, उन्हों भी चुकना पिया, उन्हों भी हार खानी पई, उन्हों भी मात खानी पई, उन्हें की आखना। ये दावा ते करदे रहे विद्वान, सिर्फ ब्राह्मणा च पैदा होंदे ने, ओ पैदा हो गया चमारां दे च, पैदा हो गया जुलाहियां च, हुण की करना? नहीं जी, ये भी ब्राह्मणी दा ही पुत्र, ये पिछले जन्म दे च ब्राह्मण सी, ए स्वामी रामानंद दा रसोईया सी, उन्होंने श्राप दिता ते इहदा चमार दे घर दे जन्म होया। इहदा मतलब सारे चमारां दा जिहड़ा जन्म होया ए रामानंद दे सरापे होए ने, और कुछ नहीं है। गल तां इन्नी हो गई, और की नहीं। ए कीर्ति बंदे ने सरापे होए कानून, इन्हां नूं सरापे होए किस तरह आखांगे? पर कहानी ते भगत माल दी इह पई कहिंदी, ब्राह्मणा दी कहानी ते इह पई कहिंदी, ते श्राप दिता जा चमार दे घर जन्म होए तेरा। ते चमार दे घर जन्म होना खिमा करनी शराप नहीं, ये रब दी बख्शिश हो सकती है कि जिहड़ा चमार सारियां दे नंगे पैरां नूं ढक देवे, वो इन्ना वड्डा

पाओ निरंकार भव खंडन साव सुख नाम निध देसी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सारा ही क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर ख्याया सब किछ तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा थान दिया सुखदाता निखुट ना कभी जाए आनंद भया सुख सहज समान सतगुर मेल मिलाई मानु नाम जाप नाम आराध आन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी

प्रथम सिनेमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा एकाग्रता प्रदान करने आज दा सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नु सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत दी समस्या है। मनुख दा कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख दा कुछ लोभ दा जगत है। ये जीवन दे ढंग दोई ने, लोड़ां दे च जीवना, लोभ दे च जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां की पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ की पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखा दिया लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होता। लोभ दा स्वभाव है कि पूरा होता ही नहीं, होता ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहता है, अधूरा ही रहता है। जगत दे च पूरन शांतमई जीवन उही जीवदे ने जो लोड़ां दे च जीवे, लोभ दे च नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना, तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना मंगता, तीजा साधन खोना लुटना। लोड़ां नूं पूरे करन दे ए तीन साधन है। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करनी, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी, खो के लोड़ां दी पूर्ति, और कोई साधन नहीं। जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उहनां नूं कहिंदे ने किरती, जो मंग के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उहनां नूं कहिंदे ने मंगता, जाचक भिखारी, और जो खो के लुट के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उहनां नूं कहिंदे ने चोर, लुटेरे, डकैत। संसार दे च ए तिन्ने मौजूद ने। ए ठीक है, वड्डा तबका किरतियां दा है, पर मंगतियां दा तबका भी घट नहीं है, ते लुटेरियां दा तबका भी घट नहीं है। लोड़ां दी पूर्ति करनी है खोक है, लोड़ां दी पूर्ति करनी है मंग के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है किरत करके, मेहनत करके। ऐसे भी दुनिया विच अवतारां दे राहीं व्यापक नुक्ते लोड़ां दी पूर्ति लई पेश होए, उन्होंने दरम्याना रस्ता चुनिया
मेहनत नहीं करनी, खोना भी नहीं, भिक्षु बना देते, मंगना है, भिक्षा मंगनी, मंगना है। मंग के लोड़ा की पूर्ति करनी है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, वख वख अवतारा ने जिहड़ी उम्मत पैदा की है उन्होंने बकायदा नाम दिते ने। जैसे अहले इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने अपनी उम्मत नो मुसलमान कहा, महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत जो पैदा की थी उन्हों भिक्षु कहा, गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल जो उम्मत दा जन्म होया उन्हों सिख आख्या गया। सिख ने, भिक्षु ने, मुसलमान ने। सनातन मत हिंदू धर्म दी शाखा एक नहीं है, ये ऐसा दरिया है जो कई धाराओं दे बगदा है। जैसे मैं देखे अमरकंटक दे बिलासपुर मध्य भारत हुण ते फैर प्रांत होर हो गया छत्तीसगढ़, उत्थे तीर्थ है अमरकंटक, धन गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहासक स्थान भी है। नर्मदा अमरकंटक तो निकलती है, ते जद निकलती है उत्थे इस दियां 70 धारावां ने, 70 टुकड़े ने, छोटे छोटे अगो जाके इकट्ठे हो जाते, दरिया की शक्ल अगे चल के बनती है, छोटियां छोटियां धारा। हिंदू धर्म की सनातन मत की धारा एक नहीं है, ये बहुत सारिया धारावां विच बगदा है और अगे जाके इकट्ठा भी नहीं आता। सन्यासी ने, बैरागी ने, ब्रह्मचारी ने, इना देच और सन्यासियां दे कई कई रूप, बैरागियां दे कई कई रूप, ब्रह्मचारियां दियां कई कई शाखावां, फिर जितने इष्ट ने उतनियां धारावां ने। किसे दा इष्ट शिव, किसे दा श्री राम, किसे दे श्री कृष्ण, ये धारा मेल भी नहीं खांदी। एक आम मनुख दी ते गल छड़ो, देश ते जगत प्रसिद्ध भगत लेखक विद्वान महात्मा तुलसी जैसे मथुरा विच आए रामायण दी कथा करन, तो हुण कुदरती गल है मथुरा नगरी श्री कृष्ण दी है, जिवें अयोध्या श्री राम दी, जिवें अमृतसर नू असी रामदासपुरी कहिंदे आ, रामदासपुर नाम दी पहले इही सी। गुरु रामदास जी दी नगरी है, अयोध्या राम दी नगरी है, बनारस शिवां दी नगरी है, मथुरा कृष्ण दी नगरी है। मथुरा विच आए महात्मा तुलसी तो ले गए श्रद्धालु इन्हां नूं कृष्ण जी दे मंदिर विच, द्वारकाधीश मंदिर विच। सारिया ने डंडौत कीती, तुलसी ने नहीं कीती, तुलसी ने नहीं कीती। पूछा गया, आप भगत हो, सिर्फ भगत ही नहीं भक्ति का संदेश देंदे हो, उपदेश देंदे हो, कथावाचक हो, सिर्फ कथावाचक ही नहीं तुसी बहुत वड्डे विद्वान हो, लिखारी हो, आपने डंडौत नहीं की थी, मत्था नहीं टेकया, तो हुण जो कुछ तुलसी कहंदे ने उन्हां दा ही बोल मैं थोड़े सामने रखा। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, बड़ी सुंदर छवि है, मूर्ति बड़ी सुंदर है, बड़ा सोहना प्रभाव पै रहा है,
ਉਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਛਬ ਬਣੀ ਭਲੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨਾਥ, ਪਰ ਤੁਲਸੀ ਮਸਤਕ ਤੌਨੇ ਵੇ ਜੋ ਧਨ ਸ਼ਬਾਨ ਹੋਏ ਹਾਥ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਧਨਸ਼ਦਾਨ ਹੋ, ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਧਨਸ਼ਧਾਰੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੁਰਲੀ ਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਉਮਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਛੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਛੇ ਨੇ। ਨਿਆਇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੌਤਮ, ਸਾਂਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਲ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਮਨੀ, ਯੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੜਾਦ, ਇਹ ਛੇ ਗੁਰੂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਅਨੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ? ਦਰਅਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੌਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਡੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਟੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ, ਕਪਲ,
कणा, पतंजलि, जैमिनी और ऋषि वेद व्यास इन्हां छे गुरुआं दा गुरु ओ एक है। गुर एको। इत्थों दावे नाल गुरु नानक देव जी कहिंदे ने ज्ञान सारा परमात्मा तो आंदा। तो फिर आदि गुरु भी परमात्मा ही है। परम पर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुरु मिलिया सोई जीव। अज तक किसे एक भी ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं आख्या ये ज्ञान मैं अपने आप प्राप्त किया है। सब कहते प्रभु तो मिले है, परमात्मा तो मिले है। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझे हम। हुण गुरु नानक देव जी महाराज इसे ही वाक दे च मंग करदे ने बाबा जय घर कीरत करते कीरत होए। जिस घर दे च कीर्ति चल रही है, जिस घर दे च सत्संग चल रहा है, हे करते तेरी गल चल रही है, तेरियां बातां चल रही हैं, तेरा ज्ञान चल रहा है, तेरी ध्यान साधना चल रही है, बाबा जय घर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तो है। उस घर दे च मैनू रख, मैनू ओ थां बख्श जिथे तेरी कीर्ति हो रही है, जिथे तेरा जस हो रहा है, जिथे तेरी महिमा हो रही है, ताकि मैं सुना सो स्थान बताओ मीता जाके हर हर कीर्तन नेता। तो मैं अर्ज कर रहा से इको ही उम्मत नो जन्म देता है गुरु नानक ने। सिख सिख केवल सिख है, इको ही उम्मत नो जन्म देता है। मुहम्मद साहब ने मुसलमान केवल मुसलमान, इको ही उम्मत नो जन्म देता है। महात्मा बुद्ध ने भिक्षु भिक्षु एक तरह की उम्मत सनातन मत दे च नहीं है। कोई आर्या समाजी ने, कोई देव समाजी ने, कोई जो है सनातनी ने, फिर इन्हां दी शाख साधुआं दी अलग अलग शाखावां ने। अगर असल देखना होवे ते जद इन्हां दी शाइयां निकलदियां ने कुंभ दे च, उदों पता चलदा है कितने फिरके ने। अलग अलग टोल लड़ भी पैंदे, झगड़ा भी हो जांदा। इस कुंभ तो पहले कुंभ दे 42 साधु मारे गए सन। नांगे साधुआं दी ते निरंजनी अखाड़े दी जंग हो गई सी, लड़ पए सी। एक ने कहा पहले असी स्नान करना है, दूजे ने कहा पहले असी करना है। कुंभ लड़ पए। हैरानगी दी गल, कुंभ दे दिन पाप धोण वास्ते आए सन, उत्थे ही पाप कर बैठे। 42 बंदे कतल हो गए। जन्मा जन्मांतरां दे पाप धोण ना आए सन, सब तो वड्डे पाप उत्थे ही कीते, सब तो वड्डे गुनाह उत्थे ही कीते। एक शाखा नहीं है, अनंत धारावां ने। ये ओ दरिया है जो अनंत धारावां दे च पहाड़ तो निकलदा, फिर मिलदियां भी नहीं आपस, अलग अलग ही चलदियां। तो मैं अर्ज कर रहा सी मनुख दिया लोड़ां ने और लोड़ां दे नाल संबंध मनुख तोड़ नहीं सकता। लख यतन करे मैनू नहीं चाहिदा पानी, पर शरीर मंगेगा, लोड़ है। लख मैं उच्ची आवाज नाल आखां मैनू नहीं चाहिदा भोजन, पर शरीर नू भुख लगेगी मंगेगा। शरीर नू गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, भुख लगती है, प्यास लगती है। कुछ ते वड़ियां वड़ियां शरीर दियां लोड़ां ने, कुछ छोटियां छोटियां होर बथेरियां। इस वास्ते मैं अर्ज करदा हुंना लोड़ां दा कोई त्यागी नहीं है, कोई त्यागी नहीं। गल मैनू भुलदी नहीं, 15 दिन मैं कस्तूरबा ग्राम इंदौर देच
संत विनोबा भावे दे होंदिया कथा कीती सी। सवेरे मैं इमली साहब गुरुद्वारे च करदा सी, शामी कस्तूरबा ग्राम जो संत विनोबा भावे जी का आश्रम सी, मैनू कहण लगे सानू भी गुरबाणी सुनाओ। मैं कह जरूर सुनावा। मैनू उन्होंने 35-40 किताबां भी अपनिया लिखिया हुई भेटा च दित्तियां। सुभाविक बजुर्ग सन, धन माया मेरे अगों आई तो चूंकि त्यागी साधुआं दा आश्रम सी, परोपकारियां दा सेवा भाव, जमीन कट्ठी करके ते गरीबां दे च वंडनी भूदान, तो ओ माया मैं विनोबा भावे दे चौले च पा दिते, एकदम सुट दिती मिट्टी। मैं कह इस तरह क्यों इन्नी नफरत, मिट्टी आई है।

0: पयो अनुग्रहो जाकाओ प्रभु को किस हृदय नाम वसाया। सार संगत का पाछा परे जानो नानक हर रस पाया। पयो अनुग्रहो जाकाओ प्रभु को किस हृदय नाम वसाया। साध संगत का पाछा परे जान नानक हर रस पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: गुरु रूप साहब सिंह जी सनेमल फतेह कबूल करने वाहुर जी का खालसा वाहुर जी की पावन पवित्र वाक राग टोडी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का मूल जिहड़ा सोच विशा प्रकरण चल रहा है जीवन के लक्ष्य को समझे बिना जीवन व्यतीत करना व्यर्थ है। जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों जी रहे हैं, जीवन क्यों है, बगौर मुताला करेंगे किसी ने जीवन का लक्ष्य खाना पीना ही रखे है। एक साधन से लक्ष्य नहीं सी, किसी के जीवन का लक्ष्य परिवार है, धन संपदा है। इस तो अगे अज तक मनुख दिया निगाह नहीं गई, इतें ही रुकिया जाए, इतें ही रुकिया। तो साहब कहने ये लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह निशाना नहीं है, जीवन का यह घर नहीं है। जेड़े जेड़े लक्ष्य बनाए ने यह तो साधन ने, साधन लक्ष्य समझ ले तो कुदरती गल है, जब साधन ही लक्ष्य हो गया फिर लक्ष्य तो असल में भुल जाएगा, भुल जाएगा। तो लक्ष्य नहीं आया है, लक्ष्य भूलिया हो। इसे वास्ते अवतारी पुरुष कहते ने याद करो किसनो लक्ष्य नो। लक्ष्य की है परमात्मा, लक्ष्य की है ईश्वर, यह भूलिया हो। करीबन करीबन सारी कायनात नो भूलिया हो। की होया कोई करोड़ों विच एक अद मनुख नूं लक्ष्य का पता, लक्ष्य की समझ है, बाकियां नूं नहीं है। जिस जिसनों भी लक्ष्य का बोध नहीं है, महाराज कहिंदे ने उहदा संसार ते आना व्यर्थ है, फिजूल फिजूल जी रहे है, व्यर्थ जी रहे है। इस तरह इस विचारधारा नूं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आरंभ करते हैं। मैं अर्ज करा सार्थक है उस मनुख का जीवना जिन्हों लक्ष्य की समझ है कि जीवन लक्ष्य की तरफ जा रहे है। लक्ष्य की कोई समझ ही नहीं है, कि जब समझ ही नहीं है तो फिर जीवन उस पासे नहीं जा सकता। चंगे चंगे जिन्हों असी सतसंगी कहने, प्रेमी कहने, नितनेमी कहने, इन्हों के भी जीवन का लक्ष्य परमात्मा नहीं है, नहीं। इन्होंने भी साधन में ही लक्ष्य समझे हुए है कि किसी हद तक जो लक्ष्य परमात्मा है इन्हों साधन की तरह वरतते हैं कि हे प्रभु तो ऐ करें तो ऐ करें तो ऐ करें, ये नहीं कि हे प्रभु तू मिले। उसका मिल जाना सब कुछ का मिल जाना है, उसकी प्राप्ति सब कुछ की प्राप्ति है। ठीक कहता एक सूफी, सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। कहता जिस दिन का मैं रब नो मंगया, हुण होर कुछ मंगना चंगा ही नहीं लगता। रब को ही मंगया, मैं रब नो ही मंगया और कुछ नहीं मंगया। परमात्मा को ही मंगया, परमात्मा को परमात्मा नो ही मंगया। बड़ा सियाणा होवेगा, सूझवान होवेगा, यही सियाणा है। बाकी सब मूल ने जो परमात्मा को होर होर ते मंग लेंदे ने, पर परमात्मा नु नहीं मंग रहे। ते जिहड़े होर होर मंगदे ने, सब कहिंदे ने मम्मा मांगन हार इयाणा। ये सब इयाणे ने, बच्चे ने, नादान ने, ना समझ ने। मम्मा मांगन हार इयाणा, इयाणे ने खिलौने ही मंगने ने। कई दफा खिलौणियां दी ममता करके, खिलौणियां दी पकड़ करके मां नूं भी भुल जांदा, प्यो नूं भी भुल जांदा। जरा वड्डा हो गया, खिलौने वड्डे हो गए ने, हुण परिवार करके निरंकार नूं ही भुल गए, हुण पदार्थां करके परमात्मा नूं ही भुल गए। परमात्मा को अगर कुछ मंगण वास्ते भी जाता, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कोई साधना भी करता, जप तप भी करता, परमात्मा को मंगता है, परमात्मा नु छोड़ के सब कुछ मंगता है, सब कुछ मंगता है एक परमात्मा नु छोड़ के। जेड़ा जेड़ा मंगता है और जो कुछ मनुख मंगता है, वह तो गुरबाणी कहती बिना मंगे ही दे रहा है। अण मंगया दान देवना, कहो नानक सच संभाल दियो। साड़ी मेहनत कोई भी संसारी अजाई नहीं जाती, और जो साड़ी प्रालभ होंगी तो मिलता जा रहा, बिना मंगया ही मिलता जा रहा। इस वास्ते साहब कहने मांगन मांग मांग मांगन मांग सो एक है मांग, उस एक नो ही मांग छड़ बाकी, बस उस एक नो छड़ के ही सब कुछ मांगते हैं। चंगे चंगे सत्संगी नितनेमी प्रेम। महाराज कहने मांगन मांग सो एक है मांग, नानक जाते परे परा। सारे धंधिया तो सारे दुखां तो मुक्त हो जाए उस एक नो मांग। सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। कहिंदा जिस दिन का मैं ये मंगया, हुण होर कुछ भी मंगना चंगा नहीं लगता। पर परमात्मा लक्ष्य होवे तां ऐसा हुंदा है। सत्संग कीता होया किसदा सफल, जिन्हें जीवन का लक्ष्य परमात्मा नो समझ लिया। सत्संग कीता सफल होया, ते जन्म किसदा सफल होया, जेदा जीवन लक्ष्य तक पहुंच गया। ये दो तरह की सफलता है। पहली सफलता कीर्तन सुन दी, कथा सुन दी, जप तप करन दी, दान पुन करन दी, सत्संग दे जान दी सफलता। किस दिन सफलता? जिस दिन जीवन का लक्ष्य केवल गुरु नूं रख दिता है, परमात्मा तो ही मिल। ये सत्संग का फल मिल गया, समझ मिल गई, पता चल गया। पर संसार से आया ये मिलया होया जन्म, ये कदों सफल होवेगा? जब जीवन लक्ष्य तक पहुंच गया। एक समझना है, एक प्राप्त करना है। जिन्हों जानना उन्हों प्राप्त करना, जिन्हों प्राप्त करना उन्हों पहले जानना। ऐसा कुछ ख्याल मेरे पातशाह ने इस वाक विच दिता है। उस परमात्मा तो बिना जो जो भी मंगना है तो किसी होर चीज नूं लक्ष्य रखना है। इस पावन पवित्र वाक विच मेरे पातशाह ने उदाहरण प्रमाण दृष्टांत बड़े सुंदर दिते ने, बड़े प्रबल दिते ने। इस वास्ते उस सारे दृष्टांत भी आप जी के सामने खोलिए, लड़ीवार आप वाक नूं सरवण करो, प्यार नाल आखो सतनाम श्री
0: वाहे। महला पंजवा मनुख बिन बूझे बिरथा आया।
1: मनुख जीवन के लक्ष्य नूं समझे बिना व्यर्थ आया। इहदा जन्म व्यर्थ गया, इहदा संसार ते आवना व्यर्थ, इहदा जीवना व्यर्थ। जे लक्ष्य दा नहीं पता, जे लक्ष्य दे नहीं समझ। हां जी
0: अनको साज सिगार बहु करता, जो मृतक उड़ाया।
1: जितना बाकी साजो समान है, जो कुछ भी है।

परम रूप स्थापन कर गए धन गुरु अमरदास जी महाराज जो आप दे रिश्ते देच बकायदा कुड़म सन। गुरु अंगद देव जी महाराज दे बेशतर श्लोक ने बहुत सारे शब्द ने जो बकायदा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे जो है दर्ज ने, लेकिन सारे शब्दां देच सारे श्लोकां देच हुक्म मनन दी ताकीद है, हुक्म मनन दा उपदेश है, हुक्म दे मार्ग ते चलन दा ही संदेश है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो जो शिक्षा दीक्षा धन भाई लैणे ने लई अपने तौर ते पूरी शक्ति दे नाल वंडदे रहे। यादगारी अस्थान आवरी दा खंडूर साहब विच मौजूद है जिथे आपने जगत नू पढ़ाना शुरू कीता, ओ अस्थान भी आप जी दा पावन रूप दे जो है मौजूद है। भट्ट आप दी उपमा इस तरीके नाल करदे ने, दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रनासन, शबद सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन, लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रित पालन, आत्म रत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन, सतगुरु कल सतगुरु तिलत सत लागे सो पै तरे, गुर जगत फिरण सी अंगरो राज जोग लैणा करे। भट्ट कहिंदे ने ए लैणा जी ए गुरु अंगद देव जी इते राज योग दी परंपरा चला रहे ने, ए अंदरों ब्रह्म नाल जुड़े हुए ने, बाहरों जगत नाल जुड़े हुए ने। मूल आप दा संदेश उपदेश परमात्मा दी खातर पदार्थ तो नहीं टुटना और पदार्थां दी खातर परमात्मा तो नहीं टुटना, संसार दी खातर निरंकार तो नहीं टुटना और निरंकार दी खातर संसार तो नहीं टुटना, क्योंकि संसार भी उसे दा रूप है, संसार प्रभु दा तन है और खुद आप स्वभाविक रूप विच इक जोत है। इसे तरीके नाल उसने साडी बणतर बनाई है, सानू तन दिता है, सानू मन दिता है। मन दे जद प्रभु दा नाम वस जाए तो मन जोगी बन जांदा है और तन नू पदार्थ मिल जान तो तन राजा बन जांदा है। इंज धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने जगत नू जो संदेश ते उपदेश दिता ओ राज योग दा दिता। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ने इसे परंपरा नू अगे तोरन लई फिर तीसरी जोत धन गुरु अमरदास जी महाराज दी परिक्रमा करके और उसे परंपरा दे मुताबिक अपना मस्तक बिरद बाबा गुरु अमरदास जी महाराज दे कदमां ते रखे, हथ जोड़ के मत्था टेकया, आप तन दे करके धरती विच समा गए, जोत करके गुरु अमरदास जी महाराज दे अंदर विराजमान होए। घन हर बूंद बसोरु मावल कुसम बसंत गणंत नयावे, राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंगे अंत को पावे, रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के कव जन भल उन्हें जोगावे।

असर होया और लोकी धड़ाधर गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की शिक्षा ते दीक्षा नु मन संत सिपाही बनन लग पे, शस्त्रधारी बनन लग पे। सतगुरु ने आज्ञा की थी, हुण आईंदा तो मैनू शस्त्र आके भेंट करो, घोड़े आके भेंट करो, ताके हर मनुख मजबूत होके जी सके। तू इतना कमजोर भी ना हो कि जने खणे दी पग ला छड़े, जना खणा तेरी पग ला छड़े। पर तू इतना जालम भी ना हो कि हर एक दी तू पग ला, इतना ठंडा ना हो कि तेनू कोई पैरां थले कुचल देवे। पर तू इतना गर्म भी ना हो कि अपने पैरां थले तू हर एक नू कुचली जावे। नहीं, खुद जी ते दूजे नू जीण दा हक दे, खुद जिंदा रह ते दूजियां दी जिंदगी दे मुसर्रत दा बायस बन, खुशियां दा बायस बन। ईरान दे सूफी फकीर दा कहना है कि ऐ बंदे रस्ते दे इंज चल कि तेनू कोई सलाम करन ते मजबूर ना होवे। अज राह चुनार के सलामत ना कुनद, बा खलक चुना जी के कयामत ना कुनद। खलकत दे इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे, तेरे रहन दे नाल परले ना होवे। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म वडाली दे होया, आप ज्योति जोत समाए श्री कीरतपुर दे च। कीर्ति करदियां करदियां कीर्ति दे आप मुजस्मा होए ते जिथे आप समाए उस थां दा नां होया कीरतपुर। सिख जगत दा ए महान तीर्थ है। दर्शन करन वाले गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे उस देह उरे ते महान प्रेरणा लैंदे ने। और गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दी सिख जगत नूं ए देन कि संत ने सिपाही बनना है, सिपाही ने संत बनना है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शहादत तो बाद ए वीर रस ए क्रांति दी शमा गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने जलाई। गुरु हर राय साहब जी गुरु नानक देव जी महाराज दी सतवीं जोत हन। आप गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे पोतरे हैं। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे पंज सपुत्र सन, जिन्हां विचों सब तो वड्डे बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अणी राय जी, बाबा अटल जी, बाबा सूरजमल ते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। आप दी एक बच्ची भी सी जिसका नाम बीबी वीरो करके सी। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने कुछ परिस्थितियां नु मुख रख के ते अपने चोन दे नजरिए नु मुख रख के गद्दी पोतरे नु बख्शिश कीती। गुरु हर राय साहब जी महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे पोतरे ने ते सिख जगत दे ए अदुत्ती घटना अगा चल के घटी कि गुरु हर कृष्ण जी महाराज ने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अपने दादे नु गद्दी दिती। दादे ने पोतरे नु गद्दी दिती है, पोतरे ने दादे नु गद्दी दिती है। गुरु हर राय साहब जी महाराज शांति दी मूर्ति, शांति दे मुजस्मे सन। इतिहास दे च बड़ी सुंदर गाथा है। बगीचे विच आप टहल रहे सन कि आप दा जामा चोला हवा नाल उड़िया ते उस उड़ारी दे नाल एक फुल टुट गया। चोले दे स्पर्श दे नाल एक खिड़िया होया फुल जमीन ते गिरिया। गुरु हर राय साहब दे कदम रुक गए, भावे आप बाल रूप दे सन उत्थे ही खड़े हो गए, सोची पै गए। इतने विच गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज टहलदे हो आए ते पुछन लगे, बेटा किस सोच दे च, किस दलील दे च पै हो? तां गुरु हर राय साहब कहन लगे, गुरदेव पिता, मेरे चोले दे स्पर्श नाल ए फुल टुट गया है। हुणे खिड़िया होया सी, डाली नाल लगिया होया सी, झूम रहा सी, डिगया है, इहदा झूमना बंद हो गया, मैनू दुख है।